श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि। तदनुसार 6 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 6:02 पर आपके लिए लेकर आएंगी सुप्रभात ऋचा वर्मा। 7:02 पर होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, जिसमें साथ रहेंगी नेहा बेनीवाल और ऋचा वर्मा, आपके लिए लेकर आएंगी दिल्ली और आसपास की खबरें। 9:00 आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, जिसमें नए और पुराने गीतों का समागम लेकर आपके साथ रहेंगी नेहा बेनीवाल। पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए आपको रहना होगा पूजा आनंद के साथ। मैचलेस म्यूजिक आवर होगा 10:02 पर और प्ले इट कूल के लिए समय रहेगा 12:02। 1:00 आप सुन सकते हैं रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित सभी शंकाओं का निवारण करने के लिए एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे श्री मनीष मल्होत्रा, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगी आकृति खंडूरी।

3 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, जिसमें आज वर्ल्ड जूनोसिस डे के अवसर पर बातचीत करेंगे डॉक्टर आरटी शर्मा से, जो कि हैं एक पशु चिकित्सक, और साथ ही रहेंगे डॉक्टर।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
7: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग

0: बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities Dignitaries from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete

उनी ठगा सब बेलाके तिसरा बार आको स्वागत गरेछे आकाशवाणी एफएम ट्रेगपन 110 मेगाहर्ट्जमा आरो इटा समयते आपना खान हुनी थाकिसे रकी फिल्मत किशोर कुमार लगावासे ए बार दियासे कुछ कुछ होता है फिल्म की गीत गाइस उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति आरो अलका याज्ञिक

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि एक जिम्मेदार नागरिक वही जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत ही अच्छे से निभाए, और इन्हीं में से एक है समय पर ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना। आज का रेनबो हेल्पलाइन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि सीखने के लिए भी है। अगर आप नौकरी करते हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप पहली बार ITR भरने की सोच रहे हैं, तो ये प्रोग्राम आप सभी के लिए है। अपने सवालों को, अपनी क्वेरीज को साथ रखिए, क्योंकि आने वाले एक घंटे में आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन में मैं आकृति इसी विषय पर बात करूंगी। और हमारे साथ हमारे बहुत ही खास एक्सपर्ट होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हर सवालों का आपके जो हैं जवाब देंगे। और आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800111026 पर भी फ़ोन कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टूडियो की लैंडलाइन नंबर पर दिल्ली के STD कोड लगाकर यानी कि 011 लगाकर डायल कीजिए 2342108023421082। एंड 2342 और प्रोग्राम में सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ हमारे अपने एक्सपर्ट आज के मनीष साहब का। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया कृति जी, शो जी। में आमंत्रित करने के लिए।
1: और हमारे लिसनर्स के क्वेरीज जो हैं आनी शुरू होती हैं, उससे पहले बहुत ही बेसिक सवाल आपसे कर लेती हूँ कि ITR किसको भरना चाहिए?
2: ITR उन सभी को भरना चाहिए जो इनकम अर्न कर रहे हैं, और उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो है 2,50,000। अगर आप 2,50,000 से ज़्यादा सालाना किसी भी सोर्स से इनकम अर्न करते हैं तो आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है। इसके अलावा जिनकी 2,50,000 इनकम नहीं है लेकिन किसी कारण से TDS कट गया है, या रिफंड लेना चाहते हैं, या अपनी भागीदारी दिखाना चाहते हैं, तब भी वो फाइल कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, सो ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित आज सवालों के जवाब देने के लिए मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में हैं। आपके सवाल हम तक पहुंच सकते हैं 9868107070 पर। और मनीष, आपसे तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ITR फाइल करने के लिए कौन कौन से कॉमन फॉर्म्स होते हैं?
2: कॉमन फॉर्म अगर मैं बात करूँ, जो सैलरीड हैं, नॉन बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, ITR 1 और ITR 2 फॉर्म्स हैं। इसके अलावा ITR 3 और ITR 4 फॉर्म्स जो हैं वो बिजनेस के लिए हैं, बिजनेस रिटर्न अगर गिनी की है तो।
1: जी जी, और फाइल करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं हमें?
2: आपको आपके फॉर्म 16, आपका AIS, TIS जो आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं
1: जी।
2: आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सके, मिलान कर सके, आपका पैन इनकम टैक्स लॉगिन, क्योंकि ई फाइलिंग जो है वो मैंडेटरी है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ऐसी कोई इनकम जो AIS या TIS में छूट गई है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कोई सेल परचेज प्रॉपर्टी की है वो जानकारी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, वो सारी जानकारी आपको एकत्रित करनी है ITR फाइल करने से पहले।
1: जी, और ITR की लास्ट डेट क्या है?
2: ITR की लास्ट डेट बहुत नज़दीक है, 31 जुलाई अगर आप सैलरीड हैं तो, और 31 अगस्त अगर आपकी प्रिजम्पटिव इनकम है, बिजनेस से इनकम है।
1: ऑल राइट, तो चाहे आपकी सैलरीड इनकम हो या प्रेजेंटिव इनकम हो, या फिर आप पेंशनर हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं, ITR तो आपको फाइल करना ही होगा। प्रोग्राम से जुड़े रहिए रेनबो हेल्पलाइन पर, आज ITR से रिलेटेड हर सवालों के जवाब आप तक पहुंचेंगे। मनीष मल्होत्रा साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ हैं, और आपके सवाल हम तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और बार बार आपसे यही कहूंगी आज कि सही जानकारी, सही समय और सही फैसला, यही है हमारी फाइनेंशियल समझदारी की पहचान। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं ITR के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बारे में, और इन ITR कौन भरेगा, कब भरेगा, क्यों भरेगा, कैसे भरेगा, ये सभी उलझने अगर आपकी भी हैं तो हम तक अपने सवालों को जरूर पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और मनीष मल्होत्रा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और बहुत से सवाल हैं। एक सवाल हम तक आया है राहुल साहब का मेरठ से। मनीष ये कहते हैं कि इन्होंने जल्दबाजी में एक गलत ITR फॉर्म चुन लिया है, तो क्या इसे बाद में बदला जा सकता है?
4: देखिए ITR के अंदर धारा 139.5 है, 139.5, जिसमें आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। सपोज करिए आपने गलत फाइल कर दी और आपने असेसमेंट ईयर 26-27 की बात कर रहे हैं, तो मार्च 27 तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि फॉर्म ही गलत भर दिया है, फॉर्म अगर आपको चेंज करना है तो आपको रेक्टिफिकेशन मोड लेना होगा, क्योंकि आप सेम फॉर्म को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर्म चेंज करना है तो आपको रिटर्न को रेक्टिफाई करना होगा, वो प्रोविजन भी उसके अंदर है। आप जाएंगे और रेक्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
3: जी जी, कविता दिल्ली से कहती हैं कि इनकी कंपनी ने अभी तक इनको फॉर्म 16 नहीं दिया है और लास्ट डेट जो है अब इसी महीने है, तो मैं क्या करूँ?
4: कविता जी कंपनी से ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं मुझे लगता है। नहीं ठीक है, देखिए एक टैक्स पेयर का अवेयर होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और व्यक्ति का देश में जो काम कर रहे हैं। और 31 जुलाई है, ये स्वाभाविक है कि नज़दीक है डेट और कई सारे प्लान होते हैं या डिले नहीं करना चाहता कोई भी, तो रिटर्न टाइम से भरना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कंपनी ने नहीं दिया और उसके कई रीज़न कंपनी के पास हो सकते हैं। ऐसे में करना क्या है कि अगर आप श्योर है कितना TDS कटा है, आप इनकम टैक्स की साइट पर जाइए, फॉर्म 26AS और AIS चेक कर लीजिए। अगर TDS मैच हो रहा है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब TDS जमा नहीं होगा या कोई डिफरेंस आ रहा है, उस केस में आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी। फिर भी मान लीजिए 31 जुलाई तक नहीं हो पाता, कंपनी नहीं कर पाती, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कीजिए और जब चेंज होगा तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज आप रिवाइज का मौका भी खो देंगे।
3: ओके, और पूनम नोएडा से हम तक मैसेज भेज रही हैं कि इनका कहना है कि पहली बार ITR भर रही हूं और घबराहट भी हो रही है, तो आखिरी तारीख से पहले किन बातों को एक बार मैं फिर से जांच लूं?
4: पूनम जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप एक टैक्स पेयर बनने वाली हैं और टैक्स पेयर बनने की शुभकामनाएं तो आपकी बनती है, और साथ ही साथ शुभकामनाएं इसलिए भी क्योंकि आप देश के हित में, देश निर्माण में सहयोग करना चाहती हैं। पहली बार आप भर रही हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपल फॉर्म्स हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, ई फॉर्म्स हैं। आप incometaxindia.gov.in पे जाएंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे या किसी और सर्च इंजन पे सर्च करेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग, आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाइए, किसी सॉफ्टवेयर या उस पे नहीं जाइए। सिंपल फॉर्म्स हैं, आप अपना स्टेटस उसमें चेक करिए, AIS चेक करिए, TIS चेक करिए, जो ज़रूरी दस्तावेज है वो अपने पास रखिए और सही जानकारी आप उसमें भरिए। ईजी है, आप ईजिली भर पाएंगे।
3: ओके, और अतुल का धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हम तक मैसेज आया है, ये कहते हैं आई हैव फाइल्ड इन ITR 1 सैलरीड ऑन 18th में और 30-45 दिन हो गए का साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन स्टिल इट्स शोइंग ITR प्रोसेसिंग ऑन पोर्टल, तो हाउ मेनी डेज विल इट फर्दर टेक टू प्रोसेस?
4: नया जो पोर्टल है वो जल्दी, अतुल जी जल्दी हो जाना चाहिए, प्रोसेस जल्दी हो जाना चाहिए। कुछ केसेस में हमने देखा है विद इन 24 आवर्स रिफंड भी आ गए प्रोसेसिंग के बाद।
3: अच्छा।
4: लेकिन ये एक साइकिल है, आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना दायित्व निभा दिया, अब आप वेट कीजिए, बहुत जल्द उम्मीद है कि रिटर्न प्रोसेस हो जाएंगी। ऑलरेडी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये सॉफ्टवेयर वाइज है और आपके वार्ड वाइज है, किसी वार्ड में ज़्यादा लोड होगा तो वहाँ पर डिले हो रहा होगा, जनरली 30-40 दिन 50 दिन में ये प्रोसेस हो जाती है।
3: जी जी, और मनीष एक सवाल मेरा है कि ITR फाइल में एक कोई नया एक्ट आया है, ये क्या है?
4: बहुत अच्छा किया आकृति जी आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस एक्ट की खासियत भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 90 61 हम जानते हैं जो चला आ रहा था, अब ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक नया एक्ट आ गया है, इसमें सिंप्लीफिकेशन है, इसमें सेक्शंस को कम कर दिया गया है, जो 819 के करीब सेक्शंस हुआ करते थे उसे घटाकर 536 सेक्शंस कर दिए गए हैं, सिंप्लीफाई कर दिया है। सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ, अभी तक हम ये कन्फ्यूजन रहते थे, अगर मैंने कहा कि 26-27 की ITR फाइल कर दो तो कन्फ्यूजन ये थी कि असेसमेंट ईयर की बात हो रही है या फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो ये मेजर चेंज है, इसको हटा के सिंपल टैक्स ईयर एक नया टर्म दे दिया गया है, नए फॉर्म्स लाए गए हैं, जो 26 फॉर्म की हम बात कर रहे हैं या फॉर्म 16 की हम बात कर रहे हैं उनके नाम चेंज हुए हैं और उनको सिंप्लीफाई कर दिया है, जैसे 26 AS अब फॉर्म नंबर 168 हो चुका है, फॉर्म नंबर 16 जो हमें मिला करता था उसे फॉर्म नंबर 130 कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्म में एक बता रहा हूँ, अभी तक आप फॉर्म 15G और 15H बैंक में दिया करते थे, जिनकी FD पे TDS कट रहा है या इंटरेस्ट पे TDS कट रहा है वो बैंक को फॉर्म 15G और 15H दिया करते थे, लेकिन इस वर्ष से आपको 15GH नहीं देना, फॉर्म नंबर 121 देना है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट 25 के अकॉर्डिंग है और ये एक्ट लागू है 1 अप्रैल 2026 से होने वाली सभी ट्रांजैक्शन पे।
3: ओके, सो इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल आज जरूर उनके जवाब जान सकते हैं। मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में आज हमारे साथ पूरे 2 बजे तक हैं। आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि आज की कमाई कल की सुरक्षा है। जी हाँ, कमाना जरूरी है लेकिन अपनी उस कमाई का रिकॉर्ड रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है और इसी काम को आसान करता है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है ITR से रिलेटेड। कोई भी आपके सवाल जो हैं हम तक पहुंच सकते हैं, पहुंच भी रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और हमारे आज के खास एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा

0: मित्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल रोहित का ये मैसेज हम तक आया है गाजियाबाद से, और ये कहते हैं कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। इनफैक्ट इन्होंने पिछले साल जो है नई नौकरी ज्वाइन की है, बीच में ही कंपनी बदली है। तो मनीष ये कहते हैं कि ITR भरते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा?
1: देखिए ये प्रॉब्लम देखी है मैंने अक्सर। मान लीजिए 12 लाख की टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट है और एक एम्प्लॉयर के पास वो जॉब कर रहा है और ड्यूरिंग द ईयर वो जॉब छोड़ देता है, एम्प्लॉयर ने TDS डिडक्ट नहीं किया, नई जगह पे आप जाते हैं, आप रिपोर्ट करना भूल जाते हैं पिछली सैलरी, या आप रिपोर्ट करते हैं एम्प्लॉयर का जो विभाग है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो उसे कंसिडर करना भूल जाता है, तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन उस अकॉर्डिंग नहीं बनती जो बननी चाहिए। शायद रोहित जी का यही प्रश्न है, मिड में इन्होंने जॉब चेंज की है। अगर दूसरी कंपनी ने फॉर्म 16 में आपकी पिछली इनकम कंसीडर कर ली है, टेक उसमें ले लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। अगर नहीं लिया तो दोनों फॉर्म 16 को आप कंबाइन करके भी भर सकते हैं। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि फॉर्म 16 फाइनल नहीं है, फाइनल वो है जो आप रिटर्न में डाल रहे हैं। अगर कोई इनकम वहाँ छूट गई है तो आपके पास मौका है वो सारी इनकम लेने का, वो सारी डिटेल्स डालने का जो पहले मिस हो चुकी हैं। इसी को रिटर्न कहते हैं, या आप खुद साइन करते हैं, जो फॉर्म 16 है वो आपके एम्प्लॉयर ने साइन किया है।
0: जी जी। नेहा का दिल्ली से मैसेज आया है और ये कहती हैं कि ये ट्यूशन लेती हैं और इनकी जो सैलरी होती है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, तो क्या फिर भी इनको ITR भरने का कोई फ़ायदा है?
1: देखिए ट्यूशन आप चाहे होम ट्यूशन लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, या किसी भी मोड से लेते हैं, ये एक बिजनेस और प्रोफेशन में कंसीडर किया जाता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 44ADA, अगर क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आपको अपनी कुल रिसीट का 50% जो है आपको कंसीडर करना ही होगा अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं। तो अब टैक्स फाइलिंग की लिमिट जो आपने डिसाइड करनी है, अगर आपकी इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2,50,000 से ज़्यादा हो रही है तो आपको फाइल करना है और आपको ITR का जो फॉर्म लेना है ITR 4 लेना है। अगर आपकी इनकम उससे कम है, टैक्सेबल इनकम, तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बिजनेस के केस में, प्रिजम्प्टिव के केस में, ये सिंपल फॉर्म है ITR 4, आप उसको भरें और प्रेफर करें, आप उसमें सारी जानकारी दे दें, 44ADA में आप उसको फाइल कर सकते हैं।
0: जी जी। और एक और सवाल है राकेश यादव साहब का दिल्ली से, और ये कहते हैं कि मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ और मेरी आमदनी हर महीने अलग अलग रहती है, तो क्या मेरे लिए भी ITR भरना ज़रूरी है?
1: जी राकेश जी, ITR उन सभी लोगों को भरनी है जिनकी रिसीट जो है, जो टैक्सेबल इनकम जो है, वो 2,50,000 से ज़्यादा है। अब वो किसी भी सोर्स से हो, किसी भी मोड में हो, किसी भी टेन्योर में हो, आप एक महीने में भी अर्न कर सकते हैं, एक साल में भी अर्न कर सकते हैं। इसीलिए हमने टैक्स ईयर जो नया कॉन्सेप्ट है, और पहले जो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आता था जो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 को ख़त्म हुआ है, उस पूरे साल की आपको इनकम लेनी है, चाहे वो एक महीने में आई। कई बार होता है ना, सीजनल बिजनेस होते हैं, 2 महीने काम नहीं है, बाकी महीने काम है, तो आपको साल भर की इनकम को लेना है। अगर वो टैक्स लिमिट्स के दायरे से ऊपर है तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब साथ में एक चीज़ क्लियर कर दूं, शायद हो सकता है किसी को कंफ्यूजन आ रही हो कि 12 लाख तक तो टैक्स नहीं था, मैं 2.5 लाख की बात क्यों कर रहा हूं। 2.5 लाख रिटर्न फाइलिंग की लिमिट है, लेकिन आपको टैक्स में जो रिबेट मिल रही है 87A के अंदर, वो 12 लाख तक पे मिल रही है। 12 लाख तक की अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए फाइल जरूर कीजिए, जो आपका दायित्व है। और राकेश जी ने जो प्रश्न किया, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में है, तो इनके लिए जो डेट है वो है 31 अगस्त, ना कि 31 जुलाई इस साल से।
0: ओके। एक और मैसेज हम तक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, और इनका कहना है कि लॉयर्स इन दिल्ली डोंट गिव द इनवॉइस फॉर देयर फी, हाउ दे गेट ट्रैक्ड, हाउ मच डिड दे अर्न ड्यूरिंग द होल ईयर एंड हाउ मच दे आर सपोज टू पे टैक्स, तो कुछ कहेंगे मनीष इसके बारे में?
1: नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, और नॉट अबाउट लॉयर्स ओनली, एवरी वन हु प्रोवाइड सर्विस दे मस्ट नीड टू इशू एन इनवॉइस। इन्होंने पूछा कि वो नहीं दे रहे, आप उनको ऑनलाइन मोड से पेमेंट कीजिए, आपको इनवॉइस देंगे, और कोई भी हो, चाहे लॉयर हो चाहे कोई भी हो, आप अगर पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसको कैश में करेंगे तो वो देने वाले की भी गलती है और लेने वाले की भी गलती है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोविजंस बना रखे हैं कि किसी एक व्यक्ति से 2 लाख से ज़्यादा आप कैश नहीं ले सकते। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, अगर वो सुन रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा अगर सिंगल ट्रांजेक्शन पे या सिंगल इवेंट से रिलेटेड, सिंगल पर्सन से आप लेते हैं, तो वो टैक्स के रडार में आ जाता है और वो टैक्स चोरी माना जाता है। तो सर्विस देने वाले को भी बचना चाहिए, और जो सर्विस ले रहे हैं उनको भी बचना चाहिए इन चीज़ों से। तो आप अगर बैंक से पेमेंट करेंगे तो फिर आपकी

0: हेडेक नहीं है, इनवाइस नहीं दे रहे, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा उस सर्विस प्रोवाइडर को आप बदलिए।
1: बिल्कुल सही सलाह दी है, जो भी करना है कानून के दायरे में करना है। ये सवाल आया है तनुज वाशने साहब का, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। इससे मिलता जुलता जवाब वैसे आप थोड़ी देर पहले दे चुके हैं, तो एक तो इनका सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई टैक्स पेयर जिसका किसी भी साल में टैक्स नहीं बनता या जमा नहीं होता, तो क्या उनको ITR फाइल करना चाहिए या नहीं?
0: देखिए, ITR टैक्स मैंडेटरी, मैंने जैसे बताया 2.5 लाख की लिमिट से ज़्यादा पे आपको सेक्शन 139(1) के अंदर फाइल करना होता है, लेकिन उसके बाद भी कई कारण होते हैं जो लोग टैक्स फाइलिंग करना चाहते हैं। टैक्स बनने से नहीं, वो इसलिए फाइल करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं कि जितना भी वो अर्न किया फाइल कर लें। कुछ केसेस में रिफंड बनता है तब भी वो फाइल करना चाहते हैं। कई बार हम कार लोन या बिजनेस लोन अप्लाई करते हैं, मुद्रा कार्ड अप्लाई करते हैं, तो बैंक जनरली हमसे ITR की कॉपी मांगता है, तो उस वजह से भी आप ITR फाइल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पास एक डेटाबेस होगा, आप अपनी इनकम को शो कर पाएंगे। टैक्स नहीं लगना, वो टैक्स स्लैब्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। साथ ही आप शायद
1: एक और सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा है कि एक बार ITR फाइल कर दी तो क्या हर बार रिटर्न भरना अनिवार्य है?
0: हर असेसमेंट ईयर अलग है, जो आगे से टैक्स ईयर के नाम से जाना जाएगा। जिस साल आपकी इनकम है आप उसी साल फाइल करें। अगर आप चाहते हैं, देखिए एक इसमें दिक्कत क्या होती है, लोग डरते क्यों हैं, जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल वाजिब है। डरते इसलिए हैं क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं या बिजनेस होते हैं, वो ऐसा तो नहीं कि एकदम उनकी रिटर्न इनकम खत्म हो जाएगी या सेल डाउन हो जाएगी जब तक बिजनेस शट डाउन ना किया हो, तो इस वजह से स्क्रूटनी में आने के चांसेस हो जाते हैं अगर वेरिएशन जो है पिछली बार के टर्नओवर से 20% से ज़्यादा आ जाता है तो। लेकिन उसमें आप अगर जेन्युइन है और आपका वास्तव में इनकम नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये डरना सिर्फ टैक्स एवेडर को है।
1: ओके, और पैंथर तोमर साहब ने किशनगंज दिल्ली से सवाल पूछा है। यूं तो आप बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर ये जानना चाहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है और इसमें से सबसे बेहतर का चुनाव कैसे किया जाए।
0: देखिए, आप दोनों कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ष से 90% से ज़्यादा रिटर्न्स जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ वो न्यू टैक्स रिजीम में ही भरी जा रही हैं। उसका फ़ायदा भी हो रहा है क्योंकि जो पहले 7 लाख की डिडक्शन होती थी, 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, अब वो 12 लाख की छूट आ गई है। और आप ATC और बाकी डिडक्शंस को मिला भी लेंगे तब भी वो 4 लाख का जो 7 और 5 लाख का जो गैप है वो कवर नहीं कर पाती। तो न्यू रिजीम में पिछले बजट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, ओल्ड रिजीम में, माफ़ कीजिए, न्यू रिजिम में आपको बेनिफिट मिलेगा, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप कंपेयर भी करेंगे, आपको एक ही कंडीशन में फ़ायदा हो सकता है ओल्ड रिजिम में, अगर आपके पास हाउसिंग लोन है, आपके पास ATC की 1.5 लाख की लिमिट पूरी हो रही है, तब भी आप कैलकुलेट करके देखिए आप, या फिर आपके पास सेट ऑफ लॉसेज जो हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, उस केस में ही आपको वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है ओल्ड रिजिम में, अदरवाइज आपको न्यू स्कीम में ही जाना चाहिए। आप दोनों को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही ये बता दूं कि ओल्ड रिजीम जो है अब वो बाय डिफ़ॉल्ट वो रिजीम नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर हैं या आप टैक्स लास्ट टाइम आपने कुछ और ऑप्ट नहीं किया था, तो डिफ़ॉल्ट जो रिजीम है वो न्यू है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं और आप बिजनेस करते हैं, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10। तो आप उस फॉर्म को भर के, 10IEA है फॉर्म, उसको आप भरेंगे तो आप रिजीम चेंज कर सकते हैं।
1: जी, थैंक यू वेरी मच। और इनकम टैक्स रिटर्न्स रिलेटेड, चाहे छोटे सवाल हैं या बड़े सवाल, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आज रेनबो हेल्पलाइन में इसी विषय पर बात हो रही है और हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं और आपके सवाल लगातार हम तक पहुंच रहे हैं 9868107070 पर।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कह रहे आपसे यही हूँ मैं कि भाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की महीना आ चुका है। 31 जुलाई है सैलरीड लोगों के लिए और बिजनेस लोगों के लिए अगस्त का आखिरी दिन है और हमेशा टाल जाते हैं ना। आप सोचते हैं क्या इस बार मैं टाइम से ज़रूर फाइल करूंगा, लेकिन फिर देरी हो ही जाती है। लेकिन देर ना कीजिए क्योंकि यही हमारी फिनेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड स्मार्ट प्लानिंग दोनों का आईना है, बिल्कुल मिरर इमेज है रेनबो हेल्पलाइन में। इसीलिए हम बात कर रहे हैं महीने के पहले हफ्ते में ही इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। हमने आमंत्रित किया है अपने एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा साहब को, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर आपके सवाल हम तक आ रहे हैं। ये सवाल आया है अभिषेक जैन साहब का नोएडा से, और इनका कहना है कि मैंने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो अब ये जानना चाहते हैं मनीष कि क्या इसकी जानकारी भी मुझे आईटीआर में देनी होगी?
1: जी, आईटीआर में इनकम के 5 सोर्स हैं और ये सोर्स भी उनमें से एक है। आप कहीं से भी आईआर करें, आप बच नहीं सकते, आपको रिपोर्ट करना है। आपने म्यूचुअल फंड की बात की, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई समय से म्यूचुअल फंड सही है, तो सही है तो उसकी जानकारी देना भी सही है। और बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड या जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, मैं सबके लिए बता देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप सेल परचेज करते हैं और आपको गेन होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब आपने एक साल से ज़्यादा रखा है, तो 1,25,000 तक का गेन आपके लिए एग्जम्प्ट होता है, वो आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये तो रही म्यूचुअल फंड वालों की बात। अब आते हैं शेयर मार्केट में, जो इक्विटी में खुद से म्यूचुअल फंड ना लेकर खुद से डील करते हैं, वो शेयर्स लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म 24 महीने से ज़्यादा है तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म पे फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है। और बात करूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन या जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, मतलब इंट्राडे सुबह शेयर लिया और मार्केट क्लोज होने से पहले पहले बेच दिया, इंट्राडे पूरी तरह से स्पेकुलेशन एक्टिविटी है। उसमें इनकम पे सीधा सीधा आपको स्पेकुलेशन के हिसाब से टैक्स लगता है, उसे बिजनेस नहीं माना जाता, उसे नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो ध्यान रखिए वो स्पेकुलेशन एक्टिविटी नहीं है, वो आपका एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है। उसमें भी आपको बुक्स बनानी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, जो आईटीआर 3 है। आपसे बुक्स मांगी जा सकती है। आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ सकता है। तो ध्यान रखें, फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप करते हैं, आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी सही जानकारी आईटीआर में ज़रूर दें, अदरवाइज आपको टैक्स के नोटिस आ सकते हैं।
0: ओके, और विकास चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि मैंने होम लोन लिया हुआ है, तो क्या आईटीआर भरते हुए मुझे कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा?
1: अगर आप ओल्ड रिजीम में, जैसे अभी पीछे भी एक प्रश्न आया था ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम में, अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, एटीसी में भी मिलेगा प्रिंसिपल रिपेमेंट का, और आप जो हाउसिंग इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाते हैं जिस हाउस के अगेंस्ट आपने लिया हुआ है, उसमें भी आपको अदर देन स्टैंडर्ड डिडक्शन या आप एडिशनल क्लेम कर सकते हैं 2,00,000 तक का।
0: ओके, निधि सक्सेना का कानपुर से मैसेज आया है, वो कहती हैं कि इस साल मैंने नौकरी छोड़ दी है और अब मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, तो क्या फिर भी मुझे आईटीआर भरना होगा?
1: अगर उस साल की टोटल इनकम, जैसा मैंने कहा, अगर वो 2,50,000 से ज़्यादा है तो आपको फाइल करना होगा।
0: एक सवाल राजीव मल्होत्रा साहब का आया है गुरुग्राम से, और ये कहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की ट्रीटमेंट पर काफ़ी पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ प्रोविज़न है कि मुझे टैक्स में छूट मिले?
1: देखिए, नए प्रोविज़न, नई रजीम में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, पहले रजीम में होता था। लेकिन अगर आप उसका बेनिफिट लेंगे भी, जो आपका 80U हुआ करता था या सेक्शन 80 की हम बात कर रहे हैं, 80C के अलावा जो हेल्थ के ऊपर बेनिफिट मिला करते थे, वो बेनिफिट कुल मिलाकर भी उतने नहीं हो पा रहे जो न्यू रिजीम के पास। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पेपर वर्क कम हो, आप न्यू टैक्स रिजीम के जाएं। तो अगर आप न्यू रिजीम की बात करेंगे तो वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा, अगर मैं समराइज करूँ तो, और ओल्ड स्कीम में आपको बेनिफिट मिलेगा, पहले की तरह ही वो मिलता रहेगा।
0: और एक है जी के गुप्ता साहब का मैसेज, ये कहते हैं मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, क्या मेरे लिए आईटीआर के नियम अलग हैं?
1: नहीं, नए एक्ट में और नए स्लैब में, रिजीम में, नए एक्ट तो कहना गलत होगा, हाँ, नए एक्ट में भी कोई ज्यादा परिवर्तन किया नहीं गया। सीनियर सिटीजन, पहले एक टर्म होती थी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, अलग अलग स्लैब हुआ करते थे, अब ऐसा नहीं है, कोई अलग बेनिफिट या कोई अलग फ़ायदा नहीं है, सभी के लिए देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कवर हो जाती है, टैक्स पेयर्स का जो नंबर है वो कवर हो जाता है वो 12 लाख की लिमिट में। तो सभी के लिए 12 लाख की जो छूट है वो मान्य है, मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई छूट है नहीं।
0: ओके, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल, आप सब तरह के सवाल इनफैक्ट हमें पूछ सकते हैं। मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके हर सवाल का बहुत ही खूबी से जवाब दे रहे हैं, बहुत ही क्लैरिटी के साथ जवाब दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 और रेनबो हेल्पलाइन पर आज बात हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड हर सवालों की, हर मामलों की।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं, मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूं कि ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के नाम सुनते ही क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये तो मुश्किल है? अगर हाँ तो आपकी यही परेशानी आज दूर हो रही है, क्योंकि आज हमारे एक्सपर्ट मनीष मल्होत्रा साहब जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से हमें बता रहे हैं ITR फाइलिंग के बारे में, और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं लगातार हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और फिलहाल ये सवाल हम तक आया है सुनीता जी का, और इनका कहना है कि मेरे बच्चे विदेश से मुझे पैसा भेजते हैं तो क्या इसे भी मुझे ITR में दिखाना होगा? मनीष
4: देखिए, अगर विदेश से पैसा बच्चे आपके भेज रहे हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ITR में वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। दूसरी चीज़, आपको जो वो पैसा मिल रहा है एज अ मेडिकल एक्सपेंसेस मिल रहा है, लिविंग एक्सपेंसेस मिल रहा है, मेडिकल बिल्स के लिए मिल रहा है या ट्रैवल के लिए मिल रहा है, अगर वो है तो वो आपकी इनकम नहीं है। सब्जेक्ट टू देयर आर सर्टन लिमिट्स कि आप 4 लाख तक रिसीव कर सकते हैं साल में, अगर आपको एज एन इनकम मिल रहा है तो वो इनकम भी आपकी एग्जम्प्ट है, लेकिन वो इनकम रिपोर्ट होगी सेक्शन 56 में, ये गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव माना जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि जो पैसा आ रहा है आपने उसको फर्दर FD में लगा दिया, बच्चों से पैसा आया आपने FD में लगा दिया, आपने रियल एस्टेट खरीद ली या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कुछ भी किया, आप इनकम के ऊपर इनकम अर्न करेंगे वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो आप ही की टैक्सेबल होगी, जो मूल जो इनकम, जो प्रिंसिपल इनकम जो आपने बच्चों से ली थी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी।
3: ओके ओके। एक सवाल जो है बहुत बार सुनने में आता है मनीष, कि किसी की डेथ होने के केस में जो ITR से संबंधित फंड्स हैं वो उनकी फैमिली वगैरह कैसे प्राप्त करें, इस केस में कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं।
4: नहीं, कई बार आपने सही कहा, कई बार सिर्फ रिफंड का इशू नहीं रहता, कई बार बिजनेस जहां कर रहे होते हैं बिजनेस ट्रांसफर करना होता है, बिजनेस की एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी होती है, तो गलती कर जाते हैं लोग, फाइल नहीं करते रिटर्न, या फाइल करते हैं तो जो डिसीज्ड है

0: रहा है लीगल हेयर डिसीज का, उसे उसके अकाउंट अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, वहां पे सर्विसेज टैब होता है, वहां पे क्लेम करना है कि मैं एक ऑथराइज पर्सन हूँ, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हूँ। वहां पे आपको सारे सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ अपलोड करने हैं, आपको ग्रांट कर दी जाएगी परमिशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटर्न फाइलिंग की। यही लीगल तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है।
1: जी एक सवाल हम तक आया है स्वाति का दिल्ली से, वो कहती हैं कि अगर किसी की दो जगह से इनकम आती हो, जैसे नौकरी हो और कहीं मकान किराए पे भी दिया हुआ हो, तो इसके लिए आईटीआर कैसे भरा जाता है?
0: आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डिफाइन है इनकम टैक्स के अंदर, जैसे हो गया सैलरी, आपका बिजनेस, आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स। जो किसी सोर्स में नहीं आता वो अदर सोर्स में आता है। सैलरी आपने बता दिया, बिजनेस अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है अगर आप मकान किराए पे देते हैं। उसके अलावा कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड से हो, किसी सेल परचेज से हो, ज्वेलरी सेल से हो, वो सारे आते हैं। तो इसका मतलब आपके कितने भी सोर्स होंगे सबको कंबाइन करके आपको आईटीआर में फाइल करना है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर है, अगर सैलरी से आप दूसरी जगह जा रहे हैं, बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म जो है आईटीआर 1 नहीं आएगा, वो आईटीआर 3 हो जाएगा या आईटीआर 4 हो जाएगा अगर आप प्रिजम्प्टिव में है तो।
1: जी जी और हर्षित मेरठ से कहते हैं कि अगर आईटीआर समय पर ना भर पाए तो फ्यूचर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या इसे लोन मिलने में भी कोई असर पड़ेगा?
0: देखिए, आईटीआर सिर्फ आप लोन लेने के लिए ना भरें, अगर नहीं भर पाए तो आपके पास लेट रिटर्न फाइल करने का भी टाइम है, जो लेट रिटर्न हम कहते हैं सेक्शन 139(4) के अंदर, वो भी मिस हो जाती है तो हमारे पास 4 साल तक का टाइम मिलता है आईटीआर यू फाइल करने का। आईटीआर अपडेटेड रिटर्न कहते हैं, वो तभी फाइल की जा सकती है, पेनल्टी के साथ फाइल हो सकती है, 5,000 तक की मैक्सिमम पेनल्टी है, जब आपका कुछ ड्यू बनता हो गवर्नमेंट के तरफ, आपका रिफंड बनता है तब आप फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप तब भी फाइल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट के पास पावर है आपको नोटिस भेजने की, आपकी रिटर्न 142 सेक्शन के अंदर फाइल करवाने की।
1: अच्छा।
0: अगर वो फाइल कराते हैं तो ऑब्वियस है आपको कंसीलमेंट ऑफ इनकम भी माना जा सकता है, फैक्ट्स हिडन के लिए भी माना जा सकता है। तो बेटर है अगर आपको लगता है इनकम कोई छूट गई है, कोई आईटीआर फाइल होने से रह गई है, तो आप उसे फाइल कर लीजिए।
1: जी जी श्रेया का दिल्ली से मैसेज आया है, ये कहती हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैंने हाल ही में एक नौकरी शुरू की है, जॉब शुरू की है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ मनीष जी कि ये आईटीआर हम खुद ऑनलाइन भर सकते हैं या किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना ज़रूरी होता है?
0: देखिए, ऑनलाइन भरना ईजी है, सिंपल है, अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ इनकम ऐसी है जो आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो अब बिल्कुल आप टैक्स कंसल्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इनकम टैक्स की साइड में भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का डिटेल दिया हुआ है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि आप एक युवा हैं, आप आईटी को ज़्यादा समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप खुद से भरेंगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी।
1: रीना कहती हैं कि आईटीआर भरने के बाद कौन से डॉक्यूमेंट संभाल के रखना चाहिए, कुछ रिसीट वगैरह होती है क्या?
0: आईटीआर भरने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आईटीआर वी मेल के माध्यम से भेजता है, आप लॉगिन करके भी निकाल सकते हैं। आईटीआर वी जो है एक्नॉलेजमेंट होती है, उसके साथ एक आईटीआर फॉर्म होता है जिसमें आपकी सारी जानकारी है, आप उसे संभाल लीजिए। 8 साल तक तो हमें अपने रिकॉर्ड संभाल के रखना ही चाहिए, जो लॉ भी कह रहा है, इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है कि 8 साल 8 असेसमेंट ईयर तक आप संभाल के रखिए, तो बेटर है आप उसको संभाल के रख लीजिए।
1: ओके। और एक और सवाल आया, शायद इससे मिलता जुलता पहले भी आया था, कि मैंने आईटीआर भर दिया है, उसका स्टेटस कैसे चेक करूं, दिखाई नहीं दे रहा मुझे कि ये जमा हुआ भी है या नहीं।
0: आईटीआर आप लॉगिन करिए और उसमें जाइए इनकम टैक्स फॉर्म्स, वहाँ पे देखिए फाइल्ड रिटर्न्स का आपको कॉलम मिलेगा, असेसमेंट ईयर वाइज सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर वहाँ पे शो नहीं हो रही तो इसका मतलब रिटर्न फाइल नहीं हुई है, अगर उसके बाद भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट है और शो नहीं हो रही तो ये टेक्निकल एरर हो सकता है, ग्रीवांस को लिखे, वो सॉर्ट आउट इसको करेंगे।
1: ऑल राइट, सो आज बात हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं मनीष मल्होत्रा साहब, हमारे एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और अभी भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज बची रह गई हैं, यूँ तो हम डिटेल में बात कर रहे हैं आपके सवालों के माध्यम से, शायद बहुत से लोगों की जो डिलेमास हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो भी क्लियर हो रहे होंगे। तो फिलहाल कितने 10 मिनट अभी और हैं बाकी प्रोग्राम में, 9868107070 पर हमें अपना सवाल भेजिए और मनीष आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। One more time.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड सभी तरह के मामलों के बारे में। मनीष मल्होत्रा साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ हैं और सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। 9868107070 आखिरी कट की तरफ बढ़ते फिर भी कह रही हूँ अभी भी कुछ सवाल बचे हैं तो भेज दीजिए हमें। फिलहाल ये आया है डॉक्टर अमित गुप्ता का कानपुर से सवाल और ये कहते हैं मैं अपना क्लिनिक चलाता हूँ और मेरे जो पेशेंट्स हैं वो मुझे अमूमन जो है या तो ऑनलाइन भुगतान करते हैं मनीष या फिर मुझे वो कैश देते हैं, तो ITR भरते समय अब मैं इन सभी इनकम का हिसाब जो है कैसे दिखाऊँ?
2: देखिए डॉक्टर साहब को प्रणाम। और एक और जानकारी, सिर्फ ITR भरना इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, नए एक्ट में एक और प्रावधान आ गया है, इनको केस रजिस्टर भी मेंटेन करना है और 8 साल तक करना होगा। केस रजिस्टर में किससे कितना पैसा लिया, किस मोड से लिया, पेशेंट का नाम, ये डॉक्टर के पास होना चाहिए, जनरली वो रखते हैं लेकिन अब इनकम टैक्स में इसको अनिवार्य कर दिया है। बाकी इन्होंने कहा कि कैश में भी रिसीट करते हैं और नॉन कैश में भी करते हैं, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं पे भी कि आप नॉन ये अदर देन डिजिटल मोड पे बिजनेस नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं लेकिन आपको बुक्स और सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। साथ ही अगर आप डॉक्टर हैं और नॉन ऑडिट केस में हैं, नॉन ऑडिट केस मतलब आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप जो इन्हेंस होकर 75 लाख भी हो गई थी तो आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते। आप 50% तक अगर आप एग्जम्पशन लेते हैं, मतलब आप मान लीजिए 50 लाख आपने अर्न किया है, 50 लाख ग्रोस रिसीट है और 50% 25 लाख तक अगर आप इनकम दिखाते हैं तो आप ऑडिट केस में नहीं आते, आपको बिजनेस प्रिजम्पटिव में आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टैक्स भर सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे मनीष, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और जाने का समय हो रहा है।
2: चलते चलते यही कहना चाहूंगा, ITR 1 और 2 वालों, सबसे पहले आपकी डेट है 31 जुलाई, उसके लिए लास्ट डेट की वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपनी रिटर्न फाइल कर दें। लेकिन अगर आप उसके बाद बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए 31 अगस्त डेट है, चेक कर लीजिए कि आपके सारे रिकॉर्ड मेंटेन है, सारी तैयारी आप कर लीजिए। अगर पैन नंबर नहीं है तो पैन नंबर को अभी अप्लाई कर दीजिए, एक दिन में पैन कार्ड आ जाता है, वो ज़रूरी दस्तावेज है आपको ITR फाइल करने के लिए, एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है।
1: जी जी, थैंक यू वेरी मच मनीष फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ मैं आकृति भी आपसे लेती हूँ विदा और कहना बार बार फिर यही चाहूँगी कि ITR भरना एक कानूनी प्रक्रिया ही नहीं है, आपके जिम्मेदार नागरिक होने का एक पहचान भी है, एक निशानी भी है, तो ITR ज़रूर भरिए, समय से पहले भरिए। इसी के साथ मैं आकृति लेती हूँ विदा, नमस्कार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आशियाना। दोस्तों, आप अपने परिवार के साथ कई जगह की यात्राओं पर गए होंगे, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अहम रथ यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। आस्था, परंपरा और समरसता का ऐसा महापर्व जिसका इंतजार देश ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बाल

0: बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी यात्रा के आध्यात्मिक, सामाजिक और पारिवारिक महत्व पर, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नीलाचल सेवा संघ के सेक्रेटरी रविंद्रनाथ प्रधान, जो जगन्नाथ टेंपल हौज खास से जुड़े हुए हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो के स्टूडियो में।
1: जय जगन्नाथ। मैं रवि प्रधान, जगन्नाथ मंदिर हौज खास से। तो हमारा जो ये रथ यात्रा 16 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा है दिल्ली के जो हौज खास से 79 से, मंदिर जो बना था 1960 से आरंभ हुआ था। कुछ विशेष व्यक्ति जो दुर्योधन प्रधान, भमरवर प्रधान और कलाहंडी महाराजा पीके देव, तो उन्होंने प्रेरणा ली थी और स्टार्ट किया था। उनके साथ कुछ विशेष लोग जुड़े हुए थे उड़ीसा से, तो उन्होंने प्रेरणा करी और जगह लिया और ये महाप्रभु वहाँ से पुरी से आए। और यह नॉर्थ इंडिया का प्रथम जो मंदिर है जो मतलब स्टार्ट हो गया, और ये प्रभु 67 में आ गए थे और 67 से वहाँ पे कुटिया में रहे, और उसके बाद मंदिर बनना चालू हो गया 70 में, जो ग्राउंड फ्लोर बन के तैयार हो गया, तो जो उसमें भगवान जी जगन्नाथ जी को विराजमान कर दिया। तो लेकिन परंपरा है, जब तक गुंबज नहीं बन जाती है तब तक ये प्रभु का जो रिचुअल नहीं हो पाता, तो गुंबज जो है 1978 में बन के तैयार हो गया। तो तैयार हो जाने के बाद 79 में जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा हुआ, तो वहाँ से पुरी से जो जगन्नाथ पुरी है
0: जी,
1: वो बहुत शिखरत्र है, तो वहाँ से प्रेरणा ली। तो उसके बाद 79 में उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रतिष्ठा करा जाता है, तो प्रतिष्ठा करा जाता है तो रथ यात्रा की प्रारंभ होती है, कोई रिचुअल सब करनी पड़ती है।
0: जी तो जी, रविंद्रनाथ जी, जैसे कि आपने बताया जगन्नाथ टेंपल हौज खास के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, कहीं ना कहीं ये जो रथ यात्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें बताती है कि ईश्वर किसी एक स्थान या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भक्त के हैं, और कुछ ऐसा ही संदेश हर मंदिर, हर रथ यात्रा से हम सभी को मिलता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रथ यात्रा का जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व हम मानते हैं, किस तरीके से ये परिवार और समाज को जोड़ने वाला पर्व है?
1: ने जो जगन्नाथ जी है रथ यात्रा 79 में, थोड़ा सा पीछे जाके 79 में, तो इसका रिचुअल होता है। तो जगन्नाथ मंदिर जहां जहां बनता है, तो पहले जगन्नाथ जी का जब प्रतिष्ठा होता है तो रथ यात्रा और महाप्रसाद का व्यवस्था करी जाती है। तो ये 79 में शुरू हो गया। तो उसके बाद ये जो प्रभु है जगन्नाथ जो है, ये जगत का नाथ है
0: जी,
1: खाली हमारा नहीं है। मतलब उड़ीसा में हम भाग्यवान है, उड़ीसा में प्रभु हमारे धरती पे विराजमान है
0: जी।
1: तो इसलिए ये उन्होंने क्या है कि छल रचा, वो जगत मतलब सृष्टि का नाथ है
0: जी।
1: तो उन्होंने प्रभु ने करा छल रचा है कि मेरा तो सब ब्रह्मांड मेरा है, तो मैं दर्शन नहीं दे पा रहा हूँ, जो हमारे परंपरा के हिसाब से कई लोग नहीं जा पाते हैं मंदिर के अंदर। तो प्रभु ने छल रचा है कि भाई ये मैं छल रचा मौसी के यहाँ जाऊँ और ये सबको दर्शन रथ के ऊपर दो। तो ओनली जो प्रभु है उन्होंने छल रच के, ये उसका एक रिचुअल है, वो जगन्नाथ जी तिथि के अनुसार जो स्नान पूर्णिमा होता है उस दिन बाहर आते हैं और नहाते हैं, तो उसका एक परंपरा है। तो बाहर कैसे जाएं, तो उन्होंने क्या किया है कि उसके बाद उन्होंने बाहर गए, बाहर जाने के बाद मौसी के, जो मौसी के यहाँ जाते हैं, तो रथ के बैठ के जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा तीनों रथ में बैठते हैं, और सुदर्शन जी भी साथ होते हैं। तो वो जाके सारे कुछ ब्रह्मांड में कोई भी वो नहीं है, तो हर आदमी वहाँ पे दर्शन कर सकता है और रस्सी को छू सकता है, जो अंदर नहीं जा पाता वो बड़े दांड में, ये बड़े जो पुरी में जो बड़े दांड है, तो इसलिए वही परंपरा को रखते हुए तो वहाँ पे जाते हैं मौसी के यहाँ। तो मौसी के

0: यहाँ तो 9 दिन बाद उन्होंने क्या करते हैं कि वापस आते हैं, तो उलट उसको उलट रथ बोलते हैं। तो वहाँ 9 दिन बाद आने के बाद फिर जगन्नाथ मंदिर के पास आते हैं, तो वहाँ पे और भी रिचुअल, 3-4 दिन का रिचुअल होता है जो मंदिर के आने से पहले उनका सारा रिचुअल होता है।
1: जी तो, रविंद्र जी, इन परंपराओं के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये जो परंपरा है ये कहीं ना कहीं एक मौका देती है सभी समुदाय को प्रभु के दर्शन का, जिससे कि सभी को समान अवसर मिले उनके दर्शन का। तो फिलहाल हम हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं गीत, और उसके बाद इस रथ यात्रा के महत्व पर, आध्यात्म पर चर्चा जारी रहेगी।

0: दोस्तों हम बात कर रहे थे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान है। जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है तो लाखों लोग जाति भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साथ जुड़ते हैं। यही संदेश परिवारों के लिए भी है, साथ चलने का, साथ निभाने का और एक दूसरे के प्रति सेवा और सम्मान का। हमारे साथ रविंद्रनाथ प्रधान जी जो कि सेक्रेटरी हैं श्री नीलाचल सेवा संघ के बने हुए हैं। रविंद्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि 16 जुलाई को जो विशेष आयोजन होने वाला है उसके लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही हैं?
1: जय जगन्नाथ। हमारा जो 16 तारीख को रथ या परंपरा के हिसाब से 16 तारीख को ये जो तिथि हम नहीं डिसाइड करते, ये परंपरा के हिसाब से तिथि डिसाइड होती है। जगन्नाथ जी का जो परंपरा है वो इसी हिसाब से इस बारी जुलाई 16 तारीख को पड़ रही है, तो उसमें हमने उसका पहले जो स्नान पूर्णिमा है वो गया 29 को, तो उसमें अणसर में जगन्नाथ जी रहते हैं, अणसर में रहते हैं, तो उसके बाद 14 जो जगन्नाथ जी का जो परंपरा है 14 को अणसर से उठ के जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते हैं। उनका बोलते हैं नव जवन दर्शन, नो नया रूप उनका होगा,
0: नव यौवन दर्शन,
1: हाँ नव जवन दर्शन। तो उसके बाद हमारा दो दिन बाद 14, 15, 16 को सारा रिचुअल सुबह से लेके चालू हो जाता है और उनकी जो उठाने से लेके सारे भोग नीति सारा तैयार करके, कोई सारी तैयारी करनी पड़ती है
0: जी।
1: तो उसके बाद जगन्नाथ जी को क्या करते हैं कि राजा खुद छेरापौंडी करके जो रिचुअल करके, तो उनको पौंडी के साथ, पौंडी उसमें लाखों लोग होते हैं और पुरी में तो कई लाख 20 लाख लोग होते हैं, तो वो तो उसके साथ कलना नहीं कर सकते, लेकिन जो हौस खास मंदिर में इसका परंपरा 79 से 48 साल हो गए, उसको 5000 आदमी से शुरू हुआ था, आज 2 लाख आदमी का समागम है, तो हर आदमी धीरे धीरे धीरे धीरे उड़ीसा के लोग होते थे, फिर मतलब और भी लोग अब जी, पिछले
0: जी रविंद्र जी, कहीं ना कहीं उत्तर भारत के लोगों को एक मौका मिला है रथ यात्रा के दर्शन करने का, क्योंकि कई बार इतना मुमकिन नहीं होता कि यहाँ से इतनी दूर जाया जाए, तो यहाँ दिल्ली में उत्तर भारत के लोगों के लिए एक मौका है कि वो जगन्नाथ टेंपल में जाकर रथ यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। और मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पर कितने लोगों के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं कि कितने लोग, क्योंकि कई बार प्रभु के दर्शन के लिए लोग दौड़े चले आते हैं और श्रद्धालुओं का हुजूम लग जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर कितनी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है?
1: अभी इसके लिए सारे हमारे जो वॉलंटियर है हमारा, ये 2-3 महीने से 3 महीने से पहले तैयारी शुरू हो जाती है। वॉलंटियर करीब 700 वॉलंटियर काम करते हैं, तो इसमें पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक और पुलिस सारा इन्वॉल्वमेंट होता है और सारा लोग सहयोग करते हैं, और उसमें NDMC, MCD सारा करके सारा चीज सभी लोग सहयोग करते हैं, तो साफ सफाई का व्यवस्था होती है और उनमें मिनिमम जैसे 2 लाख लोग कंटिन्यूस होते हैं, 40,000 कॉन्स्टेंट 30,000 से 40,000 लोग होते हैं, उसके लिए हमारे पास पुलिस प्रशासन भी होता है और हमारे वॉलंटियर, स्पेशली हमारे वॉलंटियर को ट्रेनिंग दी जाती है और सबके लिए फिर वो लोग सुचारू रूप रथ को चलाएं, और रथ जो है फिर उसके बाद उनके ऊपर खाने पीने का जो बदा, पानी का व्यवस्था, टॉयलेट व्यवस्था, सारा साफ सफाई का व्यवस्था, सारी चीजें हम अरेंजमेंट करते हैं और करते आ रहे हैं, और बाकी प्रभु सब हमेशा सहयोग, प्रभु भी प्रभु के पास समर्पण कर देते हैं, तो उससे हमारे को आस्था के साथ बहुत सहयोग मिलता है
0: जी। और बिल्कुल 48 वर्षों से इस रथ यात्रा का आयोजन यहाँ दिल्ली में हो रहा है हौज खास में, और उसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो 16 जुलाई को विशेष आयोजन होने वाला है तो क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान वहाँ पर देखने को मिलेंगे?
1: नहीं बिल्कुल मिलेंगे, यहाँ से जो रथ यात्रा चलती है उसमें सारा मतलब रथ तो बीच में होता है
0: जी।
1: उसके बाद सारा जो मतलब हमारा जैसे अब तो नॉर्थ इंडिया जो आपने बोला है उत्तर भारत भी जुड़ने लग गया
0: जी।
1: तो जैसे नगाड़े के साथ और भी कई, लेकिन उड़ीसा से परंपरा के उड़ीसा का जो छऊ नृत्य

0: मतलब कुछ विशेष जो शंख वाले होते हैं, शंख वाले हैं
1: जी
0: जो घंटा बजाने वाले जो घंट बजाते हैं, तो वो भी उड़ीसा से स्पेशली जो पुरी में बजाते हैं, तो उसका कुछ ग्रुप हमको, हम भी कोशिश करते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कैसे आ पाएं, वो भी करते हैं। सारा सांस्कृतिक के कार्य रथ के आगे आगे चलती है, तो उनके लिए रथ के आगे पानी का व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, सारा मेडिकल सुविधा तो सारा चीज करी जाती है। और यहाँ से जो और भी कोई भी है, खाने पीने का सारा रास्ते भर करीब नियर अबाउट 1 किलोमीटर
1: जी
0: रास्ता तय करते हैं यहाँ से, जो जगन्नाथ मंदिर से निकल के ये इसब सराय ऑल इंडिया मेडिकल साइंस तक जाते हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: वहाँ
1: और
0: तक।
1: मुझे लगता है कि इस दौरान गर्मी हो या फिर जैसे कि मौसम बार बार अपने रंग बदल रहा है, बारिश भी हो रही है, तो इन मौसम की इस बदलते हुए इसको देखते हुए भी कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे होंगे।
0: नहीं, बिल्कुल करे जा रहे हैं। तो जैसे धूप धूप के लिए सारा पानी का व्यवस्था, जगह जगह जगह जगह स्टॉल पानी का, हर चीज का व्यवस्था करी गई है। पूरा 1 किलोमीटर जो ये सब मतलब ये सब सराय होते हुए, और लोगों के भी आस्था है, वो लोग भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे नियम के बली के अंदर सारा, हम थोड़ा सा उनको बोलते हैं कि ये चीज़, हमारा वॉलंटियर जाके उनके साथ लगे रहते हैं, तो सब व्यवस्था होती है। फिर जब वापस आते हैं, वापस आके यहाँ पे मौसी का घर है नहीं, तो दिल्ली है, दिल्ली में तो है, फिर वहाँ से वापस जब आते मंदिर पे ही आते हैं, तो उस
1: जी
0: बीच अगर बारिश हो जाती है, लेकिन लोग इतना प्रभु के समर्पित हैं,
1: जी
0: उनको वो एक मान ले, वो प्रभु को कहते हैं कि भाई प्रभु ने बारिश कर दिया तो आशीर्वाद दे दिया, तो
1: बिल्कुल
0: उसमें झूमते हुए बारिश में उनको, हाँ कोई लोग छतरी लेके भी आते हैं, किसी ने जैकेट भी लेके आते हैं, जैसे रेन कोट लेके आते हैं, लेकिन उससे वो फर्क नहीं पड़ता, वो छतरी उतरी कुछ नहीं है उसमें, लोग मतलब जय जगन्नाथ उच्चारण करके, बल्कि बारिश आ गया तो वो सोचते हैं कि जगन्नाथ जी ने हमारे ऊपर मतलब इंद्र देवता को भेज दिया
1: बिल्कुल
0: है कि
1: बिल्कुल
0: आशीर्वाद दिया
1: जी
0: जी। तो इसलिए हम ऐसे ही आके मंदिर पे रुक जाता है रथ, तो फिर उसके बाद सारे रथ के ऊपर दर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी ये है कि जो रस्सी को खींचना है,
1: जी
0: इसमें ये कोई मोटर बाइकल नहीं है, कुछ नहीं है इसमें कोई, ये पूरा लकड़ी का रथ है, तो इसमें पहिया होते हैं, 10 पहिया, 10 पहिया है, तो उसमें क्या है कि उसको सब ब्रेक मतलब उसमें पीछे कुछ लोग को होते हैं, आगे भी होते हैं, तो जो वो है, तो उसमें आगे वाला जब
1: जी
0: खींचते हैं तो रस्सी कैसे खींचते हैं, और ये प्रभु की लीला है, वो ब्रेक भी अपने आप लग जाता है प्रभु का जब जब बोलते हैं, तो ये आस्था से जुड़ा हुआ है।
1: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो रथ यात्रा है वो सामूहिकता का संदेश भी देती है,
0: जी
1: क्योंकि रथ को खींचने में हर वर्ग और हर उम्र के लोग शामिल होते हैं, और ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के दरबार में सभी लोग समान हैं। और परिवार जब मिलकर इस पर्व को मनाते हैं ना, तो नई पीढ़ी तक हमारी परंपराएं और संस्कार भी सहज रूप से पहुंचते हैं। जी रविंद्र जी, आपके साथ हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना, और आज आशियाना में बात हो रही है आस्था, परंपरा और परिवार को एक सूत्र में पिरोने वाले महापर्व रथ यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि समाज को साथ लेकर चलने का संदेश भी है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि कैसे ये यात्रा परिवारों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ती है और इसकी परंपराएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। श्री नीलाचल सेवा संघ के सेक्रेटरी रविंद्रनाथ प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि वर्षों से आप जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जगन्नाथ टेम्पल हौज खास में, तो आप हमें ये समझाइए कि किस तरीके से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को और युवाओं को इस परंपरा से जोड़ सकते हैं और परिवारों को इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए।
4: ये जगन्नाथ, ये जो हौज खास मंदिर नीलाचल सेवा संघ का ये प्रयास है, कैसे नेक्स्ट यंग जनरेशन को, यंग जनरेशन देखो जी, उड़ीसा का तो बच्चा भी और बूढ़े भी, जब बच्चा पैदा होता है तो जय जगन्नाथ उसके कान में बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रयास किया है, जो कि कर रहे हैं, जो जगन्नाथ जी सबको ब्लेस है, जो फैमिली है, फैमिली भी जुड़े और उनको बच्चे को भी आस्था के साथ जुड़े, जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो उसके लिए हमने यहाँ पे हिंदी में किताब न, जो हौज खास मंदिर किताब भी बनाया है, तो उसमें स्कंद पुराण के ऊपर जगन्नाथ जी क्या है, तो वो बड़ा विस्तार से है, तो उसमें करीब 400 पेज का है, तो 400 पेज सबका सलाह आया यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, सब हर ऐसा नहीं नॉर्थ इंडिया, उसमें सारे मतलब राजस्थान, गुजरात, हर पूरा देश
3: जी,
4: तो उसमें मतलब देश है, बंगाली और उड़िया इसमें जुड़े हुए हैं बहुत, लेकिन अभी कुछले 10 साल से हमारा प्रयास है कि बाकी पूरा प्रांत जुड़े और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जुड़े, तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ प्रयास करते हैं और विजिट करते हैं, और अकेला नहीं है, अगर हस्बैंड वाइफ आते हैं तो बच्चों को लेके आए हो, तो उसका हम सक्सेस हुए हैं। और उसमें किताब अभी सबने का सजेशन भाई इतना मोटी किताब है, तो उसके लिए

0: ने अभी ये रथ यात्रा में हिंदी और इंग्लिश में
1: जी,
0: इंग्लिश में हमने किताब लिखी है स्कंद पुराण के ऊपर, उसमें हमने वो किताब इसी डिमांड के ऊपर कि बच्चे कैसे जुड़े हैं,
1: बिल्कुल,
0: और लोग हैं, और जो इतना बड़ा किताब नहीं पढ़ते सारांग से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने फैमिली को जोड़ने के लिए पूरी फैमिली को, तो स्कंद ये जो छोटी सी किताब है ये लॉन्च होने जा रही है, और ये हमारा रथ यात्रा के दिन हो जाएगा। जो भी चाहिए वो ले सकता है मंदिर से, हम बाकी उसमें अनाउंस भी करें कैसे मिले, और उसमें फिर हम प्रयास करेंगे, उसमें जैसे बच्चे लोग आज नेट में उसमें जैसे वो है उसमें
1: जी,
0: कैसे
1: जी, डिजिटल इंडिया के माध्यम से किस तरीके से उस किताब को
0: जाए। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, जगन्नाथ जी सबकी आस्था बनाए, वो उसमें वो ब्रह्मांड को देखते, वो चकाखी है, तो ब्रह्मांड को तो ऐसे ही सबको, यंग जनरेशन को, अगर आपने आपके धर्म में जन्म दिया है तो आपको हमारे को जोड़े रखना, आप उसी का मैं प्रभु के साथ, मैं अभी जैसे मेरे फादर ने वहाँ पे किया था तो मैं जुड़ा हूँ, मेरे बच्चे जुड़े हैं, तो ऐसे ही हम भी चाहते हैं पूरा जो देश है, और ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड में अभी लंदन में भी रथ यात्रा हो रहा है, यूएसए भी हो रहा है, उसको जोड़ सके हैं, तो इसलिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अनुरोध क्या करेंगे, प्रभु को देंगे कि ज्ञान दे, तो ऐसा करे कि मिराकल करे कि सारे बच्चे जुड़े और आस्था के साथ जुड़े, जगन्नाथ जी से जुड़े, सारे प्रभु के साथ जुड़े, तो ये हमारी प्रेरणा है
1: जी,
0: और
1: रविंद्र
0: उनको
1: जी
0: जुड़े
1: जी
0: रखना, और सभी उसी दिन आए, जैसे वहाँ पे हमने सारी व्यवस्था करी है, तो बच्चों को लेके आए, रस्सी छुए, और रस्सी का मतलब महत्व है, रस्सी का छूने से पूरे वर्ल्ड से लोग आता है पुरी में, तो यहाँ पे मतलब पुरी में नहीं जा सकते तो दिल्ली हौस खास मंदिर में आके जुड़ सकता है और दर्शन कर सकता है।
1: बिल्कुल रविंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारे जो देश के पर्व हैं उनकी झलक ना सिर्फ हमारे देश में देखने को नहीं मिलती, बल्कि दूसरे देश में भी वो उत्सव पूरे जोश उमंग के साथ मनाए जाते हैं, और भारत में त्यौहार सिर्फ उत्सव ही नहीं होता है बल्कि वो जीवन जीने की सीख भी देता है, और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ऐसा ही एक महापर्व है जो भक्ति के साथ साथ समानता, सेवा और सामूहिकता का संदेश देता है, और इसी वजह से कहीं न कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी को इस परंपरा का निर्वहन करना है और साथ ही साथ इसमें जुड़ना है, जिसके लिए बहुत एक विशेष मौका मिलने वाला है 16 जुलाई को, जब जगन्नाथ टेंपल हौज खास में रथ यात्रा का, जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होने वाला है, जिसमें हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सभी देशवासियों को जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और इस विशेष आयोजन के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए।
0: धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
1: तो आप सुन रहे थे श्री नीलाचल सेवा संघ के सेक्रेटरी रविंद्रनाथ प्रधान जी को, जिन्होंने स्टूडियो में आकर हमें इस विशेष आयोजन की, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। और फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर समय हो गया है NCERT के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग का।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब

0: करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
0: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक

0: अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
1: जी,
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है,
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं।
1: जी,
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा, और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है।
1: जी,
0: इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं,
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना।
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनो

0: रंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा।
1: जी
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी
1: नहीं
0: प्रकार
1: करना
0: का
1: चाहिए।
0: संकोच नहीं करना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं,
1: जी
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात
1: बिल्कुल
0: है।
1: बहुत जरूरी
0: कई बार
1: है,
0: ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स
1: राहत
0: फील
1: मिल
0: करता
1: जाती
0: है,
1: है। जी
0: राहत मिलती है।
1: जी
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं
1: जी
0: कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ,
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, ये
1: जी
0: बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे
1: अच्छे
0: बहुत अच्छे
1: खिलाड़ी
0: रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और
1: बिल्कुल
0: वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहें। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी,
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी,
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जो अध्यापक उनको बता सकते।

0: कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: मनोबल
0: बढ़ता है
1: जी,
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता

0: विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
1: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
0: हाँ।
1: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
0: हो सकता है,
1: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
0: जी।
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
0: जी।
1: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
0: बिल्कुल,
1: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
0: जी, उसी को।
1: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
0: हाँ होती है,
1: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
0: जी।
1: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
0: हाँ होता है,
1: तो इसका मतलब क्या हुआ
0: जी,
1: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
0: जी।
1: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
0: थोप
1: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
0: प्रोत्साहित करें।
1: इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
0: जी।
1: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल, नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
0: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
1: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
0: जी,
1: 8-44-844-0632 8-44-844-0632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
0: जी।
1: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं,

0: हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: होमो इफास बजी हालो के कोहिमा टाउन लगा आखिरी ट्राफिक अपडेट आजी लगा अनिडीएसए मोहन खोलापरा लुई किना पीएचक्यू जंक्शन इतिया नॉर्थ बाउंडे मॉडरेट ट्राफिक असे किंतु साउथ बाउंड हुएले लाइट ट्राफिक माने हल्का ट्राफिक असे जुदी दूसरा रास्ता हुएले ऑल मिनिस्टर सील जेल कॉलोनी पीएचक्यू जंक्शन पर लुई किना मेजर जंक्शन इतिया नॉर्थ बाउंडे हल्का किंतु साउथ बाउंडे हेवी ट्राफिक दिखाए से दूसरा रास्ता हुए पारा मेडिकल मॉडल रोड नहले बा आई जी और लेडीज माइल रोड टीसीपी पर लुई किना राजू पॉइंट इतना नॉर्थ बाउंडे लाइट ट्राफिक असे किंतु साउथ बाउंड हुए हेवी ट्राफिक माने भारी असे दूसरा रास्ता हुए बॉक्स कटिंग एनएचए के पर सेंसस पॉइंट नहले बा फुलबारी खचेजे ग्राउंड पर लुई किना राजू पॉइंट राजू पॉइंट पर लुई किना सेंसिस पॉइंट इतना नॉर्थ बाउंडे हल्का असे किंतु साउथ बाउंडे मॉडरेट ट्राफिक असे दूसरा रास्ता हुए सेंसिस पॉइंट पर लुई किना एनएचए के हाईस्कूल जंक्शन पर लुई किना सेंसिस पॉइंट इतना कारण नॉर्थ साउथ दुईटा दे भी हल्का असे और एनएचए के जंक्शन पर लुई किना सेंसिस पॉइंट भी नॉर्थ साउथ दुईटा दे भी हल्का ट्राफिक असे होने थे एफएम ट्रगोपन 103 मेगाहर्ट्ज कल पुजर समय 10 बजे परा लुई किना 12 बजे तक आको आनी दिया हम अपना खान कारण ट्राफिक अपडेट इतना अलग समय पीछे अपना खाना कलाइडोस्कोप प्रोग्राम पहिला चिल्ड्रेन्स प्रोग्राम फलोड बाय एटु पीछे युवा वाणी लगा प्रोग्राम आनी दिया हम युवा वाणी दे स्किल बियॉन्ड द फिश बॉल गई किना प्रोग्राम एक आनी दिया हम तो होने थे एफएम ट्रगोपन
0: FM Dragoban
2: 103 MHz
0: News, music and entertainment
2: FM
0: 103 MHz

0: नमस्कार।
1: हेलो।
0: हेलो जैकब सर, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: सर मैं दुर्गेश नागनपुरे बोल रहा हूँ, ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। ठीक
1: ओके दुर्गेश जी, बताइए कैसे हैं आप?
0: हूँ सर। अभी एक दो दिन तो फोन ही प्रोग्राम बंद हो गया था, क्या कारण हो गया था?
1: कभी कभी लाइन खराब भी हो जाता है, इसलिए हो सकता है।
0: हाँ जी सर, अभी आपका कार्यक्रम डीटीएच पर सुन रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ।
1: ओके ओके, आप लोग डीटीएच पे सुन रहे हैं ना?
0: हाँ सर, मैं तो 2017 से डीटीएच पर ही सुन रहा हूँ,
1: और
0: और अभी
1: फोन
0: तो
1: ऐप पे नहीं सुनता है ना?
0: नहीं सर, उससे भी सुनता हूँ ना। मेरे मोबाइल में ऑल इंडिया रेडियो ऐप डाउनलोड है, तो
1: अच्छा
0: उसमें
1: अच्छा
0: भी
1: अच्छा
0: सभी आकाशवाणी के चैनल है। तो
1: FM 12 के पानी ना?
0: हाँ,
1: हाँ
0: आपका FM रघुबेन भी है उसमें।
1: ओके ओके ओके
0: और जैसे लाइट बिजली नहीं रहती घर में,
1: ओके
0: तो
1: ओके
0: फिर मोबाइल ऐप पे सुनते हैं कार्यक्रम।
1: ओके
0: और अभी तो बिजली है, तो अभी डीटीएच पर सुन रहे सर। जी
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सुन रहे हैं तो इसलिए। ओके,
0: सर,
1: आज कौन सी फिल्म का गाना सुन रहे हैं?
0: आज फिल्म क्रोधी का गाना सुनना है, चल चमेली बाग में। क्रोधी
1: क्रोधी यार,
0: जी
1: क्रोधी ना,
0: जी
1: के से शुरू होता है ना,
0: जी
1: क्रोधी।
0: जी
1: मेरे ख्याल क्रोधी तो है, लेकिन चल चमेली ना।
0: हाँ सर
1: ओके, लता मंगेशकर और सुरेश वादकर का आवाज में।
0: जी सर जी जी
1: ठीक है, बजा देगा बजा देगा।
0: सर
1: ओके
0: जी सर, ये मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, पापा
1: ओके
0: राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, गोलू
1: ओके
0: कुसुमबाई, सूरज
1: ओके
0: कुमार ढाकसे, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा,
1: ओके
0: और हमारे जो भी रेडियो लिसनर ग्रुप है उसके लिए,
1: ओके बहुत
0: और
1: बहुत
0: मेरा दोस्त है धनंजय और हितेंद्र दास।
1: ओके बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
0: जी सर, धन्यवाद
1: ओके,
0: जी।
1: तो लिसनर्स का ना को हुई वो अपन के लता मंगेशकर और सुरेश वत्कार लगवा वास्ते फिल्म से क्रोधी।

0: हेलो,
1: गुड इवनिंग सर
0: गुड इवनिंग जी। तनुश्री
1: जी, श्रोताओं के लिए बताते हैं, मैं ग्रामीण नौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ।
0: ओके जी, बताइए आप कैसे।
1: और जी सर, बहुत बढ़िया। वो दो तीन दिन से कॉल नहीं लगा तो बहुत नाराज हुई थी, पर आज लगा तो बहुत खुश हो गए।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कौन से फिल्म का गाना सुनना है आपको?
1: सर बागी है, बागी
0: बागी तो है
1: जी।
0: बागी
1: छम छम छम वो ना क्या जो
0: छम छम ना। ओके, छम छम मिड ब्रोस और मोनाली ठाकुर का
1: जी। क्योंकि सर कल परसों से हमारे यहाँ मतलब दिन भर बारिश है।
0: ओके ओके ओके,
1: और आज ही बारिश मतलब खुले है अभी।
0: ओके ओके, बहुत गर्मी
1: गर्मी नहीं है, उल्टा मतलब ठंडक है। गर्मी मतलब फैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है।
0: ओके, बहुत अच्छा है, तो ऐसा होने से ठीक है ठीक।
1: और सर आप कैसे हैं सर?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, मैं भी बहुत अच्छा।
1: आप कार्यक्रम में आते हैं तो बहुत खुशी लगती है कॉल करने में।
0: ओके, बहुत धन्यवाद।
1: क्योंकि आप मतलब हमारी बातें आपको समझ भी आती है और मतलब बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना।
0: ओके, तो ठीक है। और कौन से किसको डेडिकेशन करना है ये गाना?
1: पहले तो सर आप है।
0: ओके,
1: और मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा। भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी है शिमला से, और अविनाश जी है, और गंगाधर सावनकर जी है, और रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिसोरिया जी है, अमोल भट्टाचार्य जी है, रमेश पात्रो, इन सब के साथ सर सुनोगे।
0: ओके, तो तनुश्री बहुत बहुत धन्यवाद। ओके
1: ओके, बाय
0: बाय बाय। ওয়েল লিসনার্স, কান এটা শুনব আপনাদের মিড ব্রোস আর মনালী ঠাকুর লাগা ওয়াস্তে ফিল্ম আছে বাগী।

0: छोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: ओके
0: जी, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक ठाक हूँ प्रेम सिंह जी, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है मुझे। okay. बहुत खुशी हो रही है।
1: ओके okay. आज कौन से फिल्म का गीत सुनना है आपको?
0: जी, फिल्म का नाम है हीरो।
1: हीरो,
0: हाँ जी, इसका गाना है तू मेरा हीरो है।
1: हीरो,
0: और मैं मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
1: ओके
0: जी, मुझे बड़ी मुश्किल से लाइन मिली है अभी और काफी खुशी भी हो रही है।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरो तो तू मेरा हीरो ना?
0: नहीं, केवल हीरो।
1: केवल हीरो,
0: हाँ, या फिर ये नहीं मिले तो फिर वो निकाल लीजिए, कुछ कुछ होता है।
1: हीरो तो है, हीरो फिल्म तो है, लेकिन आप कौन से गाना बोला था? लंबी जुदाई वाला?
0: हाँ, लंबी जुदाई सुनवा दीजिएगा।
1: ठीक है, रेशमा की आवाज में ना?
0: हाँ जी, रेशमा जी की आवाज में लंबी जुदाई।
1: ठीक है,
0: चार दिनों का।
1: हाँ ठीक है, सुना देगा।
0: हमारे दोस्त हैं आशुतोष अविना संगीता जी त्रिपुरा से।
1: ओके।
0: भगवान सिंह परमार, केसर सिंह राजपूत, सुनील झा और रमेश टेलर भोपाल से, सीहोर से भगवान सिंह परमार।
1: ओके।
0: और सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री।
1: ओके ठीक है, ठीक है।
0: अमल भस्माचारी, विमल भस्माचारी जो हमारे दोस्त बन चुके हैं अभी। और रमेश जी से बात नहीं हुई लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी।
1: ओके
0: हाँ जी, और आपसे तो हमारी बात हो रही है।
1: हाँ हाँ
0: जी, आपको तो हमें अपना दोस्त मान लीजिएगा और हमने भी आपको अपना दोस्त मान रखा है।
1: हाँ, मैं भी दोस्त मान लूंगा, कुछ नहीं।
0: जी, बेस्ट फ्रेंड हमारे दोस्त बन जाएंगे सर। हम बात करते
1: बन जाएगा, बन जाएगा।
0: जी जी
1: ठीक है, बता देगा।
0: हम बताना चाहेंगे सर, मौसम काफी अच्छा है अभी, हमारे यहाँ पे हवाएं चल रही है, बादल भी छाए हुए हैं।
1: ओके
0: जी, थोड़ी देर में ऐसा लग रहा कि बरसात भी हो जाएगी।
1: यहाँ भी बरसात तो हो गया, अभी थोड़ा देर में हो गया।
0: हाँ जी, और आपको बताओ सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
1: ओके ओके
0: जी, और किसी भी आकाशवाणी में कॉल लग जाता है ना हम लोगों का, इससे तो बहुत खुशी होती है। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हेलो फरमाइश रेडियो एक्टा ग्रुप, जो मतलब श्रोताओं का ही ग्रुप बना हुआ है, जो जितने भी आकाशवाणी सुनते हैं लोग।
1: ओके
0: जी, उनका एक हमने ग्रुप बना लिया है।
1: ओके ठीक है, ठीक है
0: जी जी, उसके जरिए मतलब हमें जानकारी मिलती रहती है। जैसे अभी मेरा कॉल लगा है ना आकाशवाणी कोहिमा में,
1: okay.
0: तो मैं अपने ग्रुप में जाके अपडेट कर दूंगा कि अभी हमारा कॉल लाइव कॉल लगा आकाशवाणी कोहिमा में।
1: ओके ओके जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू फॉर कॉलिंग।
0: जी थैंक यू सो मच। ओके बाय।
1: ओके बाय बाय। तो लिसनर्स का नको हुनी वो अपना लोग रेशमा लगा वास्ते से फिल्म से हीरो लंबी जुदाई।

0: हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर। सर,
0: ओके सी ओके जी।
1: फिल्म का नाम है आशिकी टू,
0: आशिकी टू।
1: और गाने के बोले इतना तो मुझको बता दे चाहूँ मैं आना, अपने तो दिल का पता दे चाहूँ मैं आना।
0: फिल्म का नाम तो आशिकी और क्या बोला था?
1: आशिकी टू, आशिकी टू,
0: आशिकी टू। कौन से गाना बोला?
1: इतना तो मुझको बता दे चाहूं मैं आना।
0: चाहू में या आना। ओके ओके। पलक मुचाल और अरिजीत सिंह का ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: ओके, बजा देगा बजा देगा।
1: तो सर, हम अपने दोस्तों को याद करना चाहेंगे।
0: और याद करिए।
1: पहले तो आपको डेलिकेट रहेगा, और आज हमारे एक नए मित्र सुन रहे हैं आपको, बदायूं से हैं बिमल ठाकुर जी।
0: ओके।
1: और शिवा लोहट जी है, तनुश्री बिटिया जी है, और अंजलि भस्मतारी है, रमेश पात्रे जी है, अमल भस्मतारी, बिमल भस्मतारी, रमेश प्रजापति जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी हैं, आशुतोष जी, अविनाश जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी हैं, और भाईकन मुंडा जी हैं, और गंगाधर सावनकर जी, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर। और जो श्रोता लाइव सुना, सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।
1: धन्यवाद सर जी। थैंक यू सर।
0: Well, listeners, kan aku huni bawa palak mucala lo Arjit Singh laga waste film ase Ashiqui 2.

0: हेलो,
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। लास्ट कॉल है, थोड़ा जल्दी बता देना क्योंकि समय चल रहा है। ओके, राजकुमार
1: राजकुमार।
0: ना,
1: हाँ
0: फिल्म का नाम। हेलो,
1: हाँ है
0: देखता हूँ मैं। राजकुमार, हाँ, कौन सी गाना सुनना है इसमें?
1: तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: तुमने पुकारा, ये गाना तो नहीं
1: दूसरा देख लो और कौन सा है। अच्छा,
0: है। राजकुमार में तो बेचैन हूँ मैं, पायल मेरी, ओ मेरी राजकुमार, आजा आजा, तू बिजली है ये खूबसूरत बदन, आँखों की आगे पीछे। कौन से गाना सुनना है इसमें से?
1: खूबसूरत बदन वाला सुना दो
0: खूबसूरत बदन वाला।
1: जी।
0: ओके, ठीक है, ठीक है,
1: और ये
0: बिल्कुल।
1: गाना सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: ओके,
1: इसके पास भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, रजराज लोधी जी है, केन्द्र सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया, धर्मवीर है दिल्ली से, लोकन वर्मा उज्जैन से, आशुतोष जी, संगीता जी, पूर्णिमा जी, पूनम जी कानपुर से, अविनाश जी, राकेश जी शिमला से, शिवा लोहार विदिशा से, देवल भस्माकारी, अमल भस्माकारी, गोल्डी जी और रमेश पात्रे, भाई को मुंडा, तनुश्री बिटिया हमारी, रक्कू बिले मेथा
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके,
1: जी। धन्यवाद आपको हमारा फोन आखिरी में रिसीव करने के लिए।
0: ओके, थैंक यू। ओके ओके,
1: ओके ओके।
0: वेल लिसनर्स, कैन प्रोग्राम से स्क्रू लेते हैं इसे तो ने प्रोग्राम से तो ने पॉपुलर लोग के आल का याक निकल गया वास्ते फिल्म से राजकुमार और तो गीत लोग थे प्रोग्राम भी से स्क्रू हो बो किंतु हम वही 7 बजे 10 मिनट और 20 मिनट हो लोगे नागमिस और इंग्रेज दे रीजनल खबर दिया होनी बो আৰু মই আকৌ আপুনি কেনেকৈ লগ কৰি হ'ব, দেট ইজ এট 9:30 উইথ মৰ হিন্দী ফিল্ম ছংছ, দেট ইজ আৰ জিছ চইচ। এণ্ড 7:30 আকৌ আছে ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক প্ৰগ্ৰাম, দেট ইজ ইয়াৰ ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক প্ৰগ্ৰাম আছে, বাট বিফৰ দেট দেৰ ইজ এ ৰেডিঅ' ফিউচাৰ, এইটো পিছতে আপুনি গান শুনীয়া হ'ব। চ' চি ইউ চুন এগেইন এট 9:30।

0: self attested photocopy scan interview din di anibuli onorot korise aro fifa world cup ti duita team bra quarter final karne next round of 16 match kan khelibole ase portugal bra spain logoti phujot 12 baje adari aro co host usa ba belgium logoti phujor 5 baje adari khelibole ase england norway morocco aro france bra quarter finals ti parhai jaise khobor sesti headlines dubara janai di ase प्रथम मंत्री नरेंद्र मोदी बा तीनटा देश यात्रा लगा सबसे पहला दे इंडोनेशिया दे पहुंची जायसे ब्यूरो मिनिस्टर ऑफ स्टेट नीति आनंद राय बा मुकुक चौधरी उन्नति काम खान साई जायसे गवर्नर नंद किशोर यादव बा महिला एम्पावर प्रोग्राम महिला एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स का रिव्यू करेसी आरो ब्यूरो मिनिस्टर अमित शाह बा कैसे की कोऑपरेटिव मूवमेंट नूतन फेज दे बढ़ाई जायसे इतु लोगोत आजि साम लगा खबर इमान दिसिस कुरियासी हुनि थाकिबी आइया काली फुजुर 7:25 मिनट ती नागामिस खबर आनि दिबोले आसे
1: Get tested for HIV and syphilis within the first 3 months of your pregnancy.
2: A pregnant HIV woman can prevent the transmission of HIV and congenital syphilis to her baby.
1: If you are tested positive, you can avail treatment that may save your baby from getting the infections.
2: HIV testing can be availed free of cost in the government hospitals across the state.
1: This information is brought to you by Nagaland State AIDS Control Society.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण

0: का इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर राय

0: Saltwater Health Center te BP laga free check up treatment aro kau phal thakibo laga modop di ase BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-116-666 call koribi
1: BP haribo desh jitibo
2: kitu jankari MTEP bar di ase
3: हेलो
4: राजेश जी मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो दूसरे कमरे में जाइए अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं लंबे जाएंगे
6: 10 लाख दीजिए बच जाएंगे
3: सर इतने कहाँ से
6: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए
5: 2 लाख भेजिए बाकी बाद में
3: सर, 2 लाख
7: क्या हुआ पापा
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं
5: अरे
3: काट दिया
7: पैनिक मत कीजिए पापा डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है ये सब फ्रॉड है
3: फ्रॉड
7: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए
10: FM Tragoban
11: 103
10: MHz News, music and entertainment
11: This is FM Tragoban
10: FM 103 MHz
12: Good evening listeners, it is Akashvani Kohima FM Tragoban 103 MHz Pra apni program dite ke huni ase

वेल लिसनर्स के अपनी कला का मैसेज आई जैसे सो मैं मैसेज पूरी दिया से लिखी ने बता से हेलो आरजे थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय फेवरेट प्ले सॉन्ग को इन लिखे से नेम से लूना लूनो फ्रॉम लाहौरी जान असम पर लिखी ने बता से लूनो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग आई थिंक मैं अपनी लगा फेवरेट गाना बजाई दिया कारण अपनी विशेष खुशी पाई थक पारे तो निश्चिना आको शुनी थी भल भल गाना बजाई दी और ये प्रिया बगाजन पारा प्रिया बोरो हेलो माय डियर मिस्ती सर जी या मेरा सोना सर जी खबर अपना गाना तो अपनी निशिना वाओ आसे दे कोई ना लिखी आसे ओके मैं एतिया है दुकान परा घरते जाय आसे बाय गुड नाइट मैं लगा हेन्सम सर कोई ना लिखी आसे वेल थैंक यू सो मच अपनी इन डावर कम्प्लीमेंट दिया कारण अपनी बेसि थैंक्स कोई ना जाना दी आसे और ये लिखी आज गुड इवनिंग एफ एम ट्रगोपान फैमिली कोई लम्बोदार रेडियो लिसनर्स ग्रुप ग्राम जसवादी से कोई लिखी आज वेल थैंक यू सो मच शुक्रिया फॉर योर मेसेज इन अदर मेसेज लिखी आज गुड इवनिंग आर्जे नमस्कार लिसनर्स आज दुर्गेश नागनपुरी राधेश्याम नागनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश सुरेश कुमार धक्षे प्रेमलाल वर्मा निकेश धर्मेंद्र ममताबाई वर्मा सुरेश वर्मा ऋषभ कनक और भावना वर्मा को इन्हें लिखा से वेल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर मैसेज एंड ये तक को लिखा से हाय इट्स मी कैक्रिले तो फ्रॉम कोहिमा आई एम आल्सो योर सॉन्ग्स को इसे वेल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ये जो निश्चिता को होनी था कि भी भल भल गाना बजाई दीब तो नेक्स्ट गाना को होनी वो अपना लोग के बनी दयाल और शेफ अली अलवरिस लगा वास्ते से फिल्म से ये जवानी है दीवानी

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर।